दोस्तों, आजादी सिर्फ बंधनों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि आजादी वो एहसास है जब दिल खुलकर मुस्कुराए, जब सपनों को पंख मिल जाए और इंसान बिना डर के अपनी दुनिया जी सके। कभी कभी जिंदगी हमें इतने बंधनों में बांध देती है ना कि हम अपने ही मन की उड़ान भूल जाते हैं, लेकिन जब दिल से डर निकल जाए ना तो हर आसमान अपना लगता है और हर रास्ता आसान लगता है।

जानते हैं दोस्तों, कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है कि उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वो तलाश किसकी कर रहा है। कोई चेहरा, कोई अपना, कोई सपना, या फिर वो सुकून जो कहीं खो गया है। जिंदगी की भीड़ में इंसान बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन दिल का खालीपन फिर भी बना रहता है। तभी हवाओं से, फिजाओं से, रास्तों से एक ही सवाल निकलता है, आखिर ये मन किसे ढूंढ रहा है।

दोस्तों, हवा जब मस्ती में झूमती है ना, तो सिर्फ पेड़ों की डालियां ही नहीं डोलती, दिल भी कहीं भीतर से थिरक उठता है, जैसे कोई पुरानी याद पायल पहनकर लौट आई हो, जैसे बचपन की गलियां फिर से पुकार रही हो। ये मस्त पवन अपने साथ न जाने कितने एहसास ले आती है, कहीं प्रेम की खुशबू, कहीं मिलन की आहट, तो कहीं जिंदगी को खुलकर जी लेने का पैगाम।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ഓർമ്മകളുടെ സംഗീതം. ബി വസന്തയുടെ ഓർമ്മകളും പാട്ടുകളും തുടരുന്നു.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
0: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
2: प्रिय गीतम,
3: നരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേൽമുരുക എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആനക്കുളത്തു നിന്നും പ്രേമലീലയാണ്. ഗാനശില്പികൾ കൈതപ്രം,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम TV के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TV के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TV के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में PM मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत यानी सुनहरे दौर के वो नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है, गोल्डन एरा के वो नगमे जो हम उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तिरकना चाहते हैं उस पर। ये वो नगमे होते हैं जो हमारे दिल के इतने करीब हैं कि जब भी हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि हम उसी दौर में चले गए हों। और बात जब गोल्डन एरा की होती है तो 1947 या यूं कहें 1940 से लेकर 1960 और 65 के बीच के जो नगमे हैं वो सब हम सबके दिल के बेहद करीब हैं। उन्हीं नगमों में से हम खास तौर से उन नगमों को चुनकर लाए हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो दौर था जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी तकनीक नहीं थी, उसके बावजूद ऐसी फिल्में बना गए हमारे बुजुर्गों ने कि हम हमेशा उसको याद करते हैं और ताक़यामत शायद याद करते रहेंगे। इसी घड़ी में सबसे पहला एक बहुत ही खूबसूरत नगमा गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में फिल्म आजाद से। यह फिल्म आई थी 1955 में। SMS नायडू के निर्माण और निर्देशन में बनी है फिल्म जिसमें मुख्य किरदार निभाया था दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी, ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शामी और एस नजीर वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है श्री रामचंद्र ने। इसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी और उषा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन हीरा का ये वो हीरा जो हम बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल के बेहद करीब है।

जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और खास बात यह है कि शंकर जयकिशन साहब को इस फिल्म के संगीत के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के निर्देशन का पुरस्कार भी मिला था। इसी फिल्म का यह नगमा लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की दिलकश महफिल में आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत की, गोल्डन एरा के वो नगमे जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो नगमे हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब है और ये वो नगमे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये उस दौर के नगमे हैं जो बहुत पीछे छूट गए लेकिन आज भी बसते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर से उसी हकीकी दौर में चले गए हों। ऐसा ही एक नगमा, अगला नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। शक्ति सामंतर साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी उन्होंने खुद किया था, इसमें मुख्य किरदार में थे अशोक कुमार साहब, मधुबाला, के एन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर, कम्मू, ब्रह्मा भारद्वाज, चमनपुरी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा हम सब के चहेते, हम सब के प्यारे कमर जलालाबादी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके लिए

का भी पुरस्कार राजकपूर साहब को ही मिला था। बेस्ट संपादन का पुरस्कार मिला था जीजी माइकर साहब को और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार एमआर अचरेकर को मिला था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी, अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक थी और यह फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। आइए इसी फिल्म का एक नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले, महेंद्र कपूर, साहिर लुधियानवी, लता मंगेशकर जी और गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे साहब के साथ साथ महेंद्र कपूर की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लता मंगेशकर जी, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर की आवाजों में यह नगमा था, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। और यह फिल्म आई थी 1960 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका अपना दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप हमारा मेल आईडी नोट कर लें। हमारा मेल आईडी है fmgoldaidaily@gmail.com। मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और जब तक आपके पैगाम हम तक पहुंचेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1965 में आई गुमनाम से। राजा नवाते साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म बेहद खूबसूरत सस्पेंस थ्रिलर और रोमांस से भरी हुई यह फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण किया था NN सिप्पी साहब ने, और इसमें मुख्य किरदार निभाने वालों में

ये खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आइए सुनते हैं फिल्म गुमनाम का वही बेहद खूबसूरत नगमा। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ महमूद साहब की।

0: मोहम्मद रफी साहब और महमूद साहब की आवाजों में नगमा था फिल्म गुमनाम से। ये फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। नगमा नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत ये कव्वाली है। आवाजें हैं आशा भोसले, मुबारक बेगम, इन दोनों की आवाजें हैं और इसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। और ये कव्वाली है फिल्म आरजू से और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद, नाजिमा, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, नाना पालिस्कर, ब्रह्मा भारद्वाज और धूमल वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था और इन तमाम अभिनेताओं अभिनेत्रियों के अभिनय से यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। तो चलते चलते यह कव्वाली आपके लिए।
1: जाने।

0: अशा भोसले और मुबारक बेगम की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। सबसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद श्रेयसी रहेंगी आपके साथ लेकर अगला कार्यक्रम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात ठीक 3:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर

पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है कजली, और ये शानदार कहानी लिखी है इंदिरा डांगी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी कजली।

47 डिग्री तापमानदार टीका टीक दोपहरिया है। कजली सिर पर सौदा किराने का झोला धरे बाजार से घर लौट रही है। मोटा की चक्की तिराहे से आगे जाती संकरी सड़क, उसके किनारे भीड़ जुटी है। होगा कोई खेल तमाशा? कजली को क्या, सूती धोती के छोर से मुंह पोंछती वो अपनी तेज चाल में है कि उस नवजात क्रंदन ने जैसे उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। अरे ये जन्म लिया बच्चा यहाँ कहाँ रोता है? उस स्वर के लवलेश मात्र ने सब कुछ विचलित कर दिया। मर्द मानुषों की भीड़ में धंसकर कजली देखती है, ये क्या, सड़क किनारे गड्ढे के कूड़े में एक नवजात शिशु बिलख रहा है। कजली ने उस बार देखा, गंदगी, झाड़ झकूरों और तपते वीराने के पार दूर कुछ बसाहट दिखाई पड़ती है, लेकिन आसपास माँ तो क्या,

मनुष्य भी कोई नहीं, बस आवारा जानवर इधर उधर को ही चले आते देखते हैं। गड्ढे के इस पार तिराहे की भीड़ कुछ देर से जुटी लगती है। उसमें से ज्यादातर अपने फोन के कैमरे से फटाफट फोटो खींच रहे हैं। दो तीन लड़के वीडियो बना रहे हैं। कुछ आवाजें पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो की भी हैं। कोई कह रहा है जरूर ये लड़की होगी, इसीलिए घूरे पे फेंकती। क्या पता लड़की है कि लड़का। आजकल तो लड़कों को भी घूरों पर फेंकने की खबरें छपती है अखबारों में। भाई कोई लड़का कैसे फेंक सकता है, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। कजली भीड़ की अश्लील हंसी के परे देख रही है। उस ओर के आवारा जानवर बड़े गड्ढे के किनारे कूदने से पहले पीछे हटने की मुद्रा में आ चुके हैं। गड्ढे में नवजात के क्रंदन का स्वर मंद पड़ रहा है। उसके ऊपर चीटे रेंग रही हैं। इतने मर्द मानुषों की भीड़ के रहते अकेली चनी आगे कैसे बढ़े। और कजली तो 2 सीटर का 5 रुपया किराया बचाने के लिए सौदा किराने का झोला सर पर रख कर 2 किलोमीटर दूर से पैदल चली आ रही है। वो अपना सैकड़ों रुपयों का सामान किनारे छोड़कर भला गड्ढे में कैसे कूद जाए। आसमान के ठहरे रथ से सूर्य नारायण आग के बाण चला रहे हैं और भीड़ बातों की। कजली ने आधे चेहरे पर घूंघट निकाला और सिर पर 40 किलो वजनी झोला साधे गड्ढे में कूद गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गड्ढे में कूदी कजली ने आधे पल में शिशु को उसकी चीटों भरे शॉल में से उठाकर खुद से चिपटा लिया। अरे ये देखो देखो जनी जनी, मानस में अगुवाई का ये हौसला। अरे कहीं इसी का तो नहीं, अस्पताल ले जाओ बच्चे को। पुलिस को किसी ने फोन किया था? अरे भाई पुलिस को तो 3 फोन कर चुके हैं, पुलिस के पास तो जीप ही नहीं है। अरे पुलिस क्या तुमसे पूछ पता कर आएगी? अरे वो तो अचानक आएंगे और 2-4 को पकड़ लेंगे कि तुम ही ने देखा होगा सब, आती होगी पुलिस तो। भीड़ अचानक छटने लगी, सब चेहरों पर एक साथ भय दिखा। पुलिस मामला हुआ तो गवाही के लिए वो गर्दन पकड़ेंगे। तिराहा 2 पल में सूना हो गया। बस इक्के दुक्के उत्साही लड़के ही वहां रह गए जो अपने अपने फोन के कैमरे से वीडियो उतारने में तलीन है। कजली ने नवजात की नग्न देह से चीते खींचे। आहा कन्या रत्न, जगह जगह हो आए घावों से खून छल छला आया है। 5 घंटे की नवजात अग्नि सी धूप, अग्नि सी ही भूख से बिलबिलाकर अब वो मरना संसी उसकी बाहों में झूल रही है। हे भगवान, ऐसे स्वागत किया है इस संसार ने इस लड़की का। कजली ने सूती धोती के शीतल छोड़ तले उस जीवित मांस पिंड को समेट लिया। सिर पर झोले का वजन साधा और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सोचती सी इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर मदद की दरकार देखकर इक्के दुक्के लोग जो वहां से हटने को ही थे तुरंत रफा दफा हो गए। कांटे झाड़ पत्थर गंदगी फांदती कजली फेरा देकर वापस तिराहे पर आ गई। कजली और किलोमीटर भर चलती है और घर पहुंचती है। सरकारी स्कूल नंबर 1 के पीछे कुमारपुरा में किराए के ये 2 कमरे, 2 नन्हे बच्चे, 7 साल का कैलाश और 4 साल की सोन। दोनों बच्चे कब से राह तकते हैं माँ के लौटने की। मम्मी झोले में क्या क्या लाई हो, ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है। बहन तो क्या नाम है इसका? नाम तुम ही रख दो ना।

कजली ने नवजात की देह साफ की, अब तक तो नाल भी नहीं कटी, और ये जख्म अस्पताल ले जाना होगा, पर उससे भी पहले उसे दूध पिलाना होगा। एक कप भर दूध है इस समय घर में। बच्चों के दूध पी चुकने के बाद ये कप भर दूध वो शाम तक बचाकर रखती है अपनी चाय के लिए। बच्चे के मुंह में आधा चम्मच भर दूध डाला तो उसे पीना भी ना आया। कजली की आंखें भर आई। अभागिन माँ ने पहला स्तनपान भी नहीं कराया इसे। मन इतना द्रवित हुआ कि वेग आत्मा की गहराई तक जा पहुंचा। ममता आंखों में आंसू बन झरझर झरती है, लेकिन स्तनों में ये कैसी झंझनाहट। सोन को माँ का दूध छोड़े साल हुआ, पर तब तक छाती में दूध नहीं उतरा। अब इसके लिए जीवन अमृत की बूंदे उतरेंगी भी या नहीं। उसने अपने आंचल को उड़ा दिया बच्ची को, और अगले पलों में एक मुस्कुराहट फैल गई उसके नम चेहरे पर। संसार में आने के पिछले 4-5 घंटों से कष्ट और घाव तो भरपूर मिल चुके नवजात को, लेकिन जीवन का रक्षक ये अमृत दूध अब मिला है।

कजली का दिमाग रफ्तार में है। जल्दी से घर के काम निपटाए, खाना पकाकर दोनों बच्चों को खिलाया और उन्हें साथ लिए दरवाजे पर ताला लगा अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। शराबी पति देर रात तक लौटेगा, तब तक तो वो लौट ही आएगी। ना लौट सकी तो पड़ोसी को चाबी दिए जा रही है। नवजात को देखकर कुम्हारों के पुरा में भीड़ जुट गई। कन्या का जन्म व्यर्थ नहीं जाता, गर्भ में आती है तो जन्मती ही है और जन्मती है तो जी भी जाती है। अपना भाग्य अपने साथ लाई है, अब तो जी गई ये भी। किसी ने एक सिक्का, किसी ने दो और किसी ने पांच का नोट रखकर नवजात कन्या के पांव छू लिए। सिविल अस्पताल की गजब अव्यवस्थाएं, कसैले जहर मुझे बर्ताव। गरीब से गरीब आदमी भी कलेजा थाम कर ही यहाँ इलाज के लिए आ पाता है। कम पढ़ी लिखी कजली लेकिन जानती है इस निर्मम तंत्र में जीवित कैसे बचे रहना है। मुख्य साहब के केबिन में अव्वल तो आम आदमी की सीधी पहुंच असंभव है। नवजात को पांव छुआई में जो सिक्के नोट मिले थे सब चपरासी की फैली हथेली पर रखने पड़े उसकी माँ यशोदा को। दिल भीतर ही भीतर कटकर रह गया, हालात जो न कराए। तीन बच्चों को लिए एक गवई माँ की ये जरूरत कि उसके एसी केबिन में घुस आई। मुख्य साहब घंटी बजाकर उसे बाहर पिकवाने ही वाले थे कि कजली ने नवजात बच्ची उनके पैरों में डाल दी। मशीनी लाल फीता शाह का पत्थर दिल अप्रत्याशित तौर पर धड़का। नवजात को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। यो खबर तो अव्वल पुलिस को देनी ही थी, लेकिन चूंकि मुख्य साहब को

0: अपने साले की बेटी की सगाई के लिए अभी ही सपरिवार निकलना था तो पुलिस के लंबे पूछताछ शेड्यूल से बचा गया। नवजात का इलाज शुरू हो गया। दोनों बच्चों को घड़ी घड़ी भूख लगती है। हाथ पास का भोजन चुक गया तो कजली ने आधा किलो आटा खरीद लिया और मरीजों के परिजन जहाँ ईंटों के चूल्हे बनाए हाथों से रोटियाँ थोप थोप कर सेक रहे थे वहाँ चली आई। किसी के जलते चूल्हे पर वो भी रोटियाँ सेक आई। अब बच्चों को परोसे किसमें? अपना आंचल फैलाकर माँ ने तीन जगह रोटियाँ रख दी। बच्चे खाना खाने लगे। खजली ने रोटी का पहला कौर मुंह में डाला ही था कि उसकी पीठ पर अचानक इतनी तेज लात मारी गई कि वो मुंह के बल धूल में जा गिरी। भूखी माँ और भूखे बच्चों का सब भोजन मिट्टी हो गया। अच्छा जी, क्या मैं यहाँ मौजूद नहीं था? क्या तेरा पति नहीं था जो तू जहाँ चाहे मनमर्जी से कहीं भी आती जाती है? ये था उसका नशेड़ी पति मनसुख, पापड़ जैसा पतला, फेफड़ों में रोग का स्थायी मरीज और नशे में घुल घुल कर मिटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। हमेशा की तरह नशे में धुत उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक चला आया था। गालियाँ बकते हुए मनसुख ने अपनी टायर की चप्पल उतार कर उसके मुंह पर मारनी चाही कि धूल से उठती कजली ने उसे एक जोर का धक्का दिया। एकदम से वापस नहीं उठ सका, पड़ा पड़ा ही चिल्लाने लगा,
1: देखो भैया, सब लोग देखो, ये कैसी जनी है जो अपने आदमी पे हाथ उठाती है। ना जाने किसको उठाकर लाई है और मेरे सर पर रखती है। मैंने मना किया तो मुझे पीटती है।
0: बिसूरते मनसुख के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा उठी। बिना पूरी बात जाने लोग तरह तरह से उसकी पत्नी को लांछित करने लगे। कैलाश और सोन के हाथ थामे कजली माँ शिशु वार्ड में चली गई, उपचाररत अपनी तीसरी संतान के पास। सवेरे नवजात को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। घर आकर काम में जिन की तरह चुट गई कजली। घर बच्चों के काम पूरे हुए तो अगरबत्ती बनाने बैठ गई। नवजात को सोन ने नाम दिया है गंगा। एक बूढ़ी पड़ोसन नाम जानकर मुस्कुराई, फिर आने का मकसद बताया, ओ गंगा की मम्मी, तनिक एक कटोरी शक्कर हो तो उधार दे दो। किसी स्वर्ग से निकली गंगा किन्हीं शिव जटाओं में सहज समा गई। पर गंगा के भाग्य में हिमालय में टिके रहने का सौभाग्य कहाँ। संसार के बीहड़ों, राख आग अस्थियों की तरफ चले जाना उसका प्रारब्ध ठहरा।

तीनों बच्चे जबकि उनकी माँ की स्नेहा सिक्त छाँव में हैं और कजली का परिश्रम भरा दिन निश्चिंतता से बीत रहा है, कुम्हारपुरा के इस किराए के घर में 1 किलोमीटर पीछे मोटा की चक्की तिराहे पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। एक सिपाही इधर उधर दुकानों पर पूछताछ कर रहा है। कल इधर से बार बार फोन कर रहे थे लोग, इधर कहीं गड्ढे में किसी ने बच्चा फेंका था क्या? गड्ढा तो यहां है, इसका मतलब है कि वारदात हुई है। बताओ तुम में से किस किसने देखी वारदात, बताओ मुझे। जो दुकानदार सब विपरीतताओं में अपनी दुकान चलाना जानते थे वे अनिभिज्ञता जताकर इधर उधर हो गए, लेकिन एक दुकान का तरुण नौकर जो यथार्थ जीवन को कम जानता था उसने वो वीडियो दिखा दिया जिसमें एक स्त्री गड्ढे में कूदकर नवजात को चींटों भरी शॉल से निकालती है और अपने दामन में समेटकर अपनी राह चली जाती है। ठीक, सिपाही ने हथेली पर घिसी तंबाकू ठोक कर गाल में दबा दी। तुम्हारा ये मोबाइल जब्त किया जाता है, चलो थाने। सर सर सर, मुझे फोन कब वापस मिलेगा? नाबालिग लड़के के फोन नहीं जैसे प्राण खिंच गए। ना तो उसके तन पे ठीक कपड़े हैं, ना पैरों में साबुत जूते। ये महंगा फोन पिछले 6 महीने की इस नौकरी की पाई पाई जोड़कर खरीदा था। सिपाही लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और थाने में सीधा थाना प्रभारी के सामने जा पहुंचा। थाना प्रभारी का दिमाग इस वक्त एकदम भन्नाया हुआ था। थाना प्रभारी साहब ने सिपाही के साथ उस गवाह लड़के को आते देखा तो रंगदारी में एक दूसरे मामले का मुलजिम समझकर उसे पुलिस के रोल में पीटना शुरू कर दिया। सिपाही तरुण लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा और उसके 8-10 बार दोहराने के बाद थाना प्रभारी के भन्नाए दिमाग तक ये बात पहुंची कि ये तो दूसरे मामले में संभावित गवाह है, एसपी साहब को किसी भी तरह खुश करना होगा। पलक झपकते ही रोजनामचे में FIR दर्ज हो गई। अज्ञात महिला ने अज्ञात नवजात का अपहरण कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गवाह लड़के के साथ घटनास्थल का मुआयना करने लगी। गवाह लड़के ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस को भागते लड़के के पीछे दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे गवाह भाग गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वीडियो के सहारे पूछताछ करती घंटे भर में कुम्हारपुरा में कजली के घर तक जा पहुंची। मैंने तो उसकी जान बचाई है, मौके पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी तब, आप लोग आज पहुंचे। आज तक तो आवारा जानवर उसे हजम कर गए होते। अस्पताल में सब सच बताया था? बताओ। हाँ, देखिए अस्पताल के कागज। नहीं नहीं, मैंने उसे चुराया नहीं है। कहने से जीप में जाकर नहीं बैठी वो, पुलिस को मजबूरन उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ी। तीनों बिलख

0: ते बच्चों को भी जीप में पीछे धकेल दिया गया। कजली अपने आंसू पोंछती अपने दिल में अपनी मरहूम माँ से मुखातिब है। तुमने मुझे स्कूल कॉलेज जाने दिया होता तो आज मेरी ये गत न होती। अब दरोगा जी के सर का दर्द कुछ हल्का हुआ। थाने पहुंचने तक वो लगातार फोन करते रहे अपने मित्र संवाददाताओं को। थाने पहुंचिए तत्काल, हमने एक घंटे मात्र में अपहरण का एक केस हल कर लिया है। प्रेस वार्ता हो गई। प्रेस वार्ता में कैमरों के फ्लैश चमके। हवालात में बंद महिला और तीन बच्चों की ओर उंगली उठाकर थाना प्रभारी साहब बता रहे हैं, मुलजिम ने कहीं से इस नवजात बच्ची का अपहरण किया है। मुलजिम के पास ये बच्चे बरामद हुए हैं जिन्हें वो अपना बता रही है। प्रेस वार्ता निपटाकर थाना प्रभारी तुरंत एसपी साहब के ऑफिस के लिए निकल गए। रात के नशे और एसपी साहब की फटकार सहित सिर का भयानक दर्द भी अब सब गायब हो चुका था। हवालात में नवजात के लगातार रोने से दीवान साहब तंग आ गए हैं। अरे भाई, कोई इस बच्ची को अस्पताल ले जाओ, गाड़ी नहीं है दीवान जी थाने में। क्यों, कहाँ गई दोनों गाड़ियाँ? एक तो दारोगा जी एसपी ऑफिस में ले गए हैं और दूसरी वो दारोगा जी की जो बिटिया है ना, उसको कोचिंग क्लास छोड़ने गई है। अच्छा, तो कोचिंग क्लास से लौटकर तो आएगी ना अभी? नहीं, वो फिर दारोगा जी की जो मिसेज है ना, उनको बाजार ले जाएगी।
1: हैं?
0: तो क्या अपहृत बच्ची मुलजिम के पास ही रहेगी? और जवाब में होना ये था कि बदबूदार, अंधेरी और दुर्गंध भरी हवालात की असहनीय गर्मी में अगले दिन तक माँ बच्चों को सड़ना था। लेकिन आईजी साहब के अचानक दौरे की खबर ने न सिर्फ थाने में सुव्यवस्था का हड़कंप मचा दिया, बल्कि बंदियों का भी हड़बड़ी के साथ इंतजाम होने लगा। थाने की जीप बाजार जाती थाना प्रभारी की मेम साहब को आधे रास्ते में सड़क पर उतारकर थाने की तरफ वापस दौड़ी। दारोगा जी हक बकाए, थाने में लौट आए और कजली को तीनों बच्चों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने भेज दिया। क्या तुमने बच्ची को चुराया है? मजिस्ट्रेट मैडम ने सीधा ही प्रश्न कर दिया कजली से। धड़कते दिल को काबू करती बड़े हौसले और संयम से कजली ने विस्तार पूर्वक सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अस्पताल के कागज और जब्त वीडियो उसकी सच्चाई के सबूत थे। कजली को आरोप मुक्त करने और बच्ची को अनाथालय भेजने के फैसले के अंत में मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौहान ने पुलिस के लिए फिर वही सलाह लिखनी चाही, पर कानून की विदुषी ने अफसोस भरी सांस लेते हुए अपनी कलम रोक ली। मैडम जी, ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मेरे सिवाय कोई इसे माँ की तरह नहीं पाल सकता, आंचल पसार कर अनुनय किया कजली ने। मैजिस्ट्रेट मैडम आधे पल को अवाक रह गई, फिर संभली, औपचारिक आवाज में उसे बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में बताया। कोर्ट के बाहर जाती कजली को दूर तक देखते उसके तरल हृदय में भीतर ही भीतर एक दुआ की, हे ईश्वर, इस बच्ची को बस ये माँ मिल जाए। अंधेरा ढलते कजली दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंची। दरवाजा खुला है, नशे में धुत पति भीतर से उसका नाम ले लेकर गालियां दे रहा है। मोहल्ले के दो एक निकम्मे उसके पास बैठे हैं, उसे शह दे रहे हैं। कजली का दिल एक बार मुकर गया। छोड़ दे ये घर और आदमी, दिन रात के कलह से प्राण तो छूटे। दहलीज पर खड़ी वो ये सब सोच ही रही है कि दोनों बच्चे भागकर घर के भीतर पहुंच गए। पति के मित्र चुपचाप निकल गए। वो भीतर आई और रात का खाना बनाने में जुट गई। अगली सुबह सब घरेलू काम पूरे कर अगरबत्ती बनाने बैठी तो रत्ती भर दिल नहीं लगा उसका काम में। उसके सीने की नसों में कसक भरी सरसराहट होती है। बच्ची दूध के लिए तरस रही होगी। मम्मी, गंगा क्या अस्पताल में है? मम्मी, उसे घर कब लाएंगे हम? क्या आपने बहन को अस्पताल वालों को दे दिया? बच्चों के सवालों ने काम करते हाथों को रोक दिया। कजली निकल पड़ी थाने की ओर। दीवान साहब चौंकते हैं, गजब जनी, कल गिरफ्तार हुई थी, आज फिर आ गई थाने। कजली हाथ जोड़कर अनाथालय का पता पूछती है। शहर से 4 किलोमीटर बाहर इस तरफ सड़क के बाहर टेम्पो 2-सीटर नहीं जाते हैं। मोड़ से ही कच्ची सड़क पर पैदल चलती रही कजली। दूर से ही वो अपनी नवजात के बिलखने का सर पहचान जाती है। पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं माँ के। कजली ने भागकर गंगा को पलने में से उठा लिया।

लिया। बच्ची दूध पीते पीते सो गई। उसकी गीली लंगोटी और कथरी बदलकर वापस उसे पलने में लिटा दिया और कुछ देर यूं ही निहारती रही कजली, ओ मेरी बिटिया।

0: अब उसने चारों तरफ नजर डाली। बड़े कमरे में तीनों पल्लों में बच्चे लेटे हैं, जो शायद तीनों ही लड़कियां हैं। बाकी कमरे में खेलती, सोती या रोती एक से लेकर 5 साल तक की कुल 7 लड़कियां हैं। इसके अलावा उसमें 3 छोटे लड़के भी हैं, जिसमें से 2 दिव्यांग दिख रहे हैं। कजली इस बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर घूमकर किसी अधिकृत व्यक्ति को ढूंढने लगी कि जिससे बात की जा सके। अनाथालय की रसोई, बगीचे, बाथरूम, ऑफिस, सभी स्थलों पर 5 साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां काम करती दिख रही हैं। कोई 6 बरस की बच्ची बगीचे के पौधों को पानी देती, तो कोई 7 बरस की बालिका सब्जी काट रही थी। कजली को कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वो दफ्तर गई, जहां 5 साल की एक लड़की पोछा लगा रही थी। बिटिया, यहाँ बात किससे करनी है?
1: ओ, मैडम जी तो घर में सो रही हैं। वो सामने ही उनका क्वार्टर है। 5 बरस की लड़की किसी पारंगत नौकरानी की तरह अपने काम में लगे लगे ही जवाब देती है।
0: लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी जगह पोछा लगाए देती हूँ। कजली ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची इस अप्रत्याशित बात से सिखाया काम भूल गई। आंखें बड़ी कर उसे ताकती हुई बोली, मेरी अम्मा बहुत बुरी थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए फेंक दिया, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है, और सब दुत्कारते हैं।
1: नहीं बिटिया, अम्मा बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं कुछ लोग, कुछ रिवाज जो अम्मा से बच्चों को छीन लेते हैं। मैं मार डालूंगी उन सबको।
0: वो बच्ची रोने लगी।
1: तो पढ़ना, खूब खूब पढ़ना, तब जीत जाओगी गंदे लोगों से और गंदे रिवाजों से भी।
0: हो सकता है तब तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी मिल जाए।
1: कजली ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गई। इंचार्ज मैडम के कमरे के बाहर खिड़की पर लगा इतना बड़ा कूलर चल रहा है, जिसकी इतनी ऊंची आवाज है, या कि उसकी नींद इतनी गहरी है कि बड़े देर तक दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऑफिस में इंतजार करने का मन बनाकर वो लौटने को हुई ही थी कि पीछे दरवाजा खुल गया।
2: कौन हो तुम और पालन गृह के अंदर कैसे घुस आई?
1: जी, एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ।
2: दरख्वास्त ले लीजिए। ऐसे दरख्वास्त हम नहीं लेते, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। जाओ जाओ, पहले ऑनलाइन फार्म भरो, बच्ची देखने फिर किसी दिन आना, कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया।

ही देर बाद पालेंगरे की बूढ़ी आया हाथों में सब्जियों से भरे थैले लेकर आई। कजली ने दौड़कर मुख्य द्वार से ही उसके दोनों हाथों से दोनों थैले ले लिए और रसोई तक पहुंचा आई। ऑफिस में पंखे में सुस्ताते वृद्धा अब उसे एक राम कहानी सुना रही है। मैडम के अलावा यहाँ तीन लोग और थे, एक सहायक इंचार्ज, एक ऑफिस वाला और एक चपरासी। एक दिन सात आठ लड़कियां यहाँ से भाग निकली पीछे खेतों के रास्ते। उन लड़कियों की उम्र 10 से 15 के बीच में थी। वो सब पीछे के गांव पहुंची और गांव वालों से रो रोकर आप बीती सुनाने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुलाई। तब से पालनगृह के दो कर्मचारी जेल में हैं, एक फरार है। मामले में मैडम का भी नाम आया था, लेकिन मैडम की पहुंच बहुत ऊंची है। वो बीमारी का आड़ लेकर तुरंत गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। मैडम को तो बस अपना सामान बटोरना है यहाँ से, सो भी वो मुझसे ही करवाएंगी। अरे वो थैरी थायराइड की बीमार, 18-18 घंटे बेहोश की तरह सोया करती हैं। हे भगवान, ऐसी भयंकर बीमार मैडम पालनगृह कैसे चलाती हैं? पिछले 3 सालों से तो उनका छोटा भाई ही सब काम देखता था, जिसे मैडम ने यहाँ का सहायक इंचार्ज बनवा दिया था। मैडम के रिश्तेदार बड़े ऊंचे अफसर हैं, हाँ, इसीलिए उनका भाई यहाँ कांड करता था और उसकी शिकायत भी न कर सकी बच्चियां। जब कभी भी निरीक्षण वाली टीम आती, लड़कियां जरूर अपनी बात कहती थीं, पर इस चार दीवारी से बाहर उनकी आवाज जाने नहीं दी मैडम के भाई ने। 3 सालों तक यहाँ की बच्चियां यह जुल्म सहती रहीं, और तुम देखती रहीं अम्मा, कुछ कहती तो मैडम नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती थी। मेरा बेटा निकम्मा है, 2 करोटी के लिए मैंने अपना परलोक बिगाड़ लिया। वृद्धा अपनी चिमचिमाई पनीली आंखों को धोती के कोर से पोंछती है। अम्मा, मुझे बच्ची गोद लेनी है जो कल यहाँ आई है, दरखास्त कैसे लगती है? अरे भाई, वो तो अब कंप्यूटर के भीतर से लगती है। तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ, कंप्यूटर कर दुकान पे 50 रुपए दे देना, वो सब कागज पत्थर बनाकर कंप्यूटर में डाल देगा और तुम्हारे नाम की दरखास्त लग जाएगी। 50 रुपए? ओह, तो कल जाऊंगी बाजार। आने से पहले फिर कजली ने अपनी गंगा को दूध पिलाया, सीने से चिपटाया। नेहा का कैसा नाता है जो आत्माओं के तार जोड़ता है। दो अपरिचिताएं नहीं, माँ बेटी का एक जोड़ा है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद अगले 8 महीने तक कजली हर इतवार बच्चों के साथ गंगा से मिलने जाती रही। बच्चे हर स्कूली छुट्टी का अब अलग तरह से इंतजार करते। छोटी बहन से मिलने जाएंगे हम, कजली उल्टे फंदे सीधे फंदे के डिजाइन में जल्दी जल्दी स्वेटर बुन रही है। बच्चे दरी पर बैठे पढ़ रहे हैं, तभी कजली के सेल फोन की घंटी बजती है। अधिकृतों के समक्ष आवेदनों की सुनवाई हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ लिए कमेटी के सामने प्रस्तुत है। तुम्हारा पति नहीं आया साथ में? उसकी सहमति नहीं है क्या? पहले से ही तुम्हारे दो बच्चे हैं, फिर तुम्हें एक और बच्चा गोद लेने की जरूरत है ही क्यों? अगरबत्तियां बनाने बेचने का मामूली काम करती हो। अच्छा, तो इसमें दो बच्चों के साथ इस बच्ची को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना कपड़ा मुहैया करवा पाओगी, इसकी क्या गारंटी है भला? इन सब प्रश्नों का कजली ने एक ही उत्तर दिया है, मैं माँ हूं गंगा की। कमेटी के समक्ष पूरी कहानी है, गंगा के चींटों भरे शॉल से लेकर बुने जा रहे नर्म स्वेटर तक। और कमेटी ने निर्णय सुनाया है। ऑटो में जब कजली तीनों बच्चों के साथ घर के बाहर उतरी तो कुम्हारपुरा में रौनक लग गई। सब नन्ही बच्ची को देखने उमड़ पड़े हैं। कैलाश छोटी गदबद बहन को गोद में उठाकर घुमाने की कोशिश कर रहा है। सोन ने पूछा, मम्मी गंगा बड़ी होकर क्या बनेगी? रसोई करती कजली के हाथ कुछ पल को रुक गए। सोन के प्रश्न की प्रतिध्वनियां उसके भीतर लगातार गूंज रही थी। उसने जैसे खुद से एक वादा किया, मैं अपनी माँ को नहीं दोहराऊंगी, और सधे शब्दों में कहा, जो बनना चाहेगी वो बनेगी। भयानक तपती रसोई में जैसे अनायास ही एक ठंडक खुल गई थी। कजली के रुके हाथ फिर से चल पड़े थे और सोन उसका चेहरा दमक उठा।

अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम था कजली। इसे आपके लिए लिखा था इंदिरा दांगी ने। पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस महा पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर संघ हूं मैं श्रेयसी, और शुरुआत करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम इस नगमे के साथ।

गीत दोस्तों आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, जहां हम पुराने और बेहद ही बेहतरीन गीत आपके साथ साझा करते हैं, हम और आप साथ में मिलकर सुनते हैं और उसे यूं ही एंजॉय करते हैं। तो आइए अब रुख करते हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म 9 to 11 का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, जब हम रेडियो पर जुड़ते हैं तो बेहतरीन नगमों के लिए जुड़ते हैं, और क्यों ना हो, आखिर कुछ ऐसे हमारे जज्बात हैं, ऐसे हमारे हालात हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत पड़ती है, और वो सारे शब्द हमें मिलते हैं हमारे हिंदी बॉलीवुड गीतों से। जी हाँ, बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गाने और हमारे दिल का हाल। तो आइए अब बढ़ चलें अगले गीत पर।

दिल का तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, जब कोई बड़ी बड़ी आंखियां दिखाए तो बस दिल तो चूहा बन के कहीं दुबक ही जाता है। खैर, इस तरह की नोकझोंक अटकेलियां तो हर तरह के रिश्तों में लगी रहती है, लेकिन जब दिल का मामला होता है तो इन अटकेलियों का एक अलग ही रस होता है। अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से लिया हमने आवाजें गीता दत्त और रफी साहब की। बढ़ते हैं अब अगले गीत की तरफ। गीता दत्त की ही आवाज में अगला ये नगमा फिल्म भाई भाई से।

आ फिल्म से ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की थी। अगला जो गीत आपके सामने पेश कर रही हूं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में है, फिल्म श्री 420 का। आइए सुनते हैं ये नगमा।

मधुमती फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, बोल सजाए सलील चौधरी के, बोल सजाए शैलेंद्र के और म्यूजिक दिया सलील चौधरी ने। दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी, और हम खास कुछ ऐसे पुराने क्लासिकल गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो हमेशा हमेशा सुहाने रहते हैं, हमारे दिलों में तरोताजा रहते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ, फिल्म नया दौर का ये झूमता हुआ गाना रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में, जिसके बोल सजाए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। आइए सुनिए ये नगमा और झूम जाएं इसके साथ।

वही दोस्तों, किस तरह हमारे गीतों का सिलसिला चलता रहता है, हमारा साथ ही वहीं बना रहता है और एक से एक बेहतरीन गीतें, एक से एक बेहतरीन गाने हमारे दिलो दिमाग में बस यूं ही झूमते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस अगले गीत की तरफ। फिल्म पेइंग गेस्ट का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक एस डी बर्मन साहब का।

पेइंग गेस्ट के इस बेहतरीन गीत के बाद दोस्तों अब एक और प्यारा सा नगमा मेरे जहन में आ रहा है फिल्म काला पानी का। आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, लेकिन हाँ साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम गीत सुहाने अब इस गीत के बाद ही चल जाएगा विराम पर, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा FM गोल्ड चैनल पर, क्योंकि इसके बाद अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के पार अगला कार्यक्रम लेकर मैं श्रेयसी आपसे फिर जुड़ जाऊंगी। तो चलते चलते ये एक नगमा आपकी नजर।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का

उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 और सेकेंड्स की सुइयां बढ़ती चल रही हैं और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। संघु में श्रेयसी और आइए इस रात की चांदनी बिखेरें और गीतों की श्रृंखला बढ़ाते चलें। शुरुआत करते हैं इस गीत से, फिल्म आनंद से लिया ये नगमा हमने मुकेश की आवाज में।

आनंद फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। ये गीत ही कुछ ऐसा है, ये फिल्म ही कुछ ऐसी थी जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कुराहटों में छुपाने की दर्द या जज्बात को बयां करती थी। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो देखा वहां कतारें बहुत हैं।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना दोस्तों। म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं अनजान के। अगला नगमा जो आपके सामने पेश कर रही हूं फिल्म गोलमाल का है, किशोर कुमार की ही आवाजें हैं और बोल सजाए हैं गुलजार ने। आइए सुनते हैं ये नगमा।

कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं।

मुकेश और कंचन की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का ये नगमा आपने सुना, बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म कभी कभी का वो बेहतरीन नगमा जो हर किसी की जबान पे हमेशा रहता है। जी हाँ, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल हैं खयाम साहब के।

अनामिका फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की, बोल सजाए मजरूह सुल्तान पुरी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आरडी बर्मन साहब का ही एक और सजाया संगीत फिल्म कटी पतंग से ये नगमा आपके साथ साझा कर रही हूं। बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और आवाज है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा।

0: साहिब तू क्या कर रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

फिल्म द ग्रेट गैम्बल से आशा भोसले की आवाज में ये बेहतरीन नगमा आपने सुना। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो पेश कर रही हूं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूँ मैं श्रेयसी। एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वक्त रहते कदर कर लें अपनी हर उस एहसास का, बाद में होने वाले को पछतावा ना झेलना पड़े। तो इसलिए गीतों का सिलसिला जारी रहे, शब्द भी अगर आपको ना मिले तो बॉलीवुड की ओर रुख करें और एक से एक बेहतरीन नगमे अपनी एहसासों में पिरोएं और उसे जरूर बयां करें। इसी के साथ अब मैं श्रेयसी यहां लेती हूं आपसे इजाजत, जल्द मिलने के वादे के साथ। लेकिन एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद कार्यक्रम हमराही लेकर फिरोज आलम होंगे आपके साथ। नमस्कार।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor Arun Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP rule states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TV ke chief si Joseph Vijay.

बशीर बद्र साहब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो फिर ऐसे ही जज्बात उभर कर सामने आते हैं। और प्यार और मोहब्बत ही ऐसी चीज है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो आपको सचमुच पागल सा बना देता है, पागल सा कर देता है, और यही मोहब्बत की पहली निशानी होती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:12 और 5 सेकंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात के इस वक्त में आप किसी सफर पे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई में मशगूल हैं। इन सब के बावजूद संगीत, म्यूजिक, मौसीकी एक ऐसा साथी होता है जो हर वक्त आपको सुकून पहुंचाता है और उस दुनिया में लेकर जाता है जहां पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जब तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं तो फिर आप प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज। और ये सफर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं। जिंदगी हम तमाम लोगों की बिल्कुल एक जैसी है। किसी की जिंदगी में हमें लगता है कि बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां भी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी इन तमाम मरहलों से गुजर कर आगे बढ़ती है। कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात, कुछ आसानियां और कुछ खुशियां। इन तमाम चीजों से मिलकर ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है। और जब तक ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी में ना हो, तो फिर जिंदगी की खुशियों का और जिंदगी की तकलीफों का हमें अनुभव ही ना होगा। ऐसे ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है और हम सब मिलकर जिंदगी को इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुछ पाने की ललक, कुछ हासिल करने की तमन्ना, और उन तमन्नाओं में एक हम सफर की बात। प्यार, मोहब्बत, जब तक हमारी जिंदगी में प्यार ना हो तो ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है हम आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी आपने ये नगमा सुना था। और अगला नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए।

मैं ना भूलूंगा फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से आवाजें थी लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, हमराही की वो महफिल जो आपका हम सफर बनकर आपके साथ चलता है, आपका हमराही बनकर आपका हमराह बनता है, यानी आपके सफर को आसान बना देता है। अगर आप भी इस वक्त किसी सफर पे हैं, कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो आपको चाहता है या आप उसे चाहते हैं या आप उन सब उनके दिल के करीब हैं, तो बस उन्हें याद कीजिए और इन नगमों को सुनिए, फिर देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुकून आपको मिलेगा। ये नगमे हमेशा हमारे दिल की गहराई में उतर जाते हैं और हमें ले जाते हैं किसी और दुनिया में, शायद उसे ख्यालों की दुनिया भी कह सकते हैं या अपने गुजरे वक्त को भी आप याद कर सकते हैं और याद करके आप उसे दौर में वापस जा सकते हैं जब वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन था और आपका महबूब आपके साथ था। लेकिन अब जब वो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो आप उसे किस तरीके से याद कर रहे हैं, यही बताता है अगला यह नगमा। फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में करवटें बदलते रहे सारे रात हम।

कदम आगे बढ़ाएंगे हमराही के इस महफिल में। और अगला नगमा फिल्म अगर तुम न होते से लता जी और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। फिल्म अगर तुम न होते से नगमा तालता जी की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब याद किसी की आती है

और जब किसी की याद में आप मुब्तला होते हैं तो फिर ऐसे अल्फाज आपकी जबान से निकलना लाजमी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। और ये यादें हमेशा के लिए हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसी होती है, क्योंकि ये वो यादें होती हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब होती हैं। और ऐसे ही यादों के साथ हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, रुकते नहीं हैं, बस बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल हमराही के इस सफर की तरह। और हमराही में अगला नगमा कुछ ऐसा ही, संगम फिल्म से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। संगम फिल्म का ये नगमा मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और

तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आंधी फिल्म का यह नगमा था, आवाजें थी लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की। इसी के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हमराही से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ

0: रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidutalai Chirutai Gal Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League. IUML. Lok Sabha Leader of Opposition and Senior Congress Leader Rahul Gandhi.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 8 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और आज के इस नई सुबह में आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल है। कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि आते आते

आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। जब कोई आपका अपना आपके साथ हो तो आपके दिल में बहुत सारी उमंगे जमा होती रहती है, बहुत सारी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हिचकोले लिए घूमती रहती है। बहुत सारी बातें आपके दिल में फूलों की तरह खिलती रहती हैं, और जब ऐसा होता है तो समझें कि आपका अपना आपके दिल के कितने करीब है। और जब आपका अपना कोई आपका साथ दे रहा हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो, तो यकीन मानिए दिल की उमंगे तो जमा होंगी ही होंगी, और फिर जिंदगी भी बेहद खूबसूरत होगी। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आवाज है हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की फिल्म मुनीम जी से।

तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। फिल्म प्यासा सावन का यह नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और महफिल सजी है आपकी अपनी अरुणिमा की। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात आए तो मायूस बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और वो रोशनी आपको एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाती है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से डटकर जो मुकाबला करके आगे बढ़ेगा वही जिंदगी में

सच्चा कामयाब योद्धा होगा। और कहते हैं कि दो लफ्जों की है ये दिल की कहानी, मोहब्बत और मुस्कुराहट से भरी ये जिंदगानी। मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ अगर आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदमों में होती है। इसी नगमे के साथ, ऐसे ही नगमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे द ग्रेट कैम्बलर फिल्म से आशा भोसले और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के अच्छा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:34:50। महफिल है अरुणिमा की और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो चलिए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के सफर के साथ साथ इस सफर को भी यूं ही आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, फिल्म सपनों का सौदागर से। आवाजें हैं मुकेश साहब और शारदा की।

तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के सफर में बन जाए उजाला। ये नगमा था सपनों का सौदागर फिल्म से, आवाजें मुकेश साहब और शारदा की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की ये महफिल। जावेद नसीमी कहते हैं कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। यकीनन कोई एक चेहरा ऐसा होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपकी आंखों में बसा होता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, और वो अगर

होकर चलता है तो फिर ये सफर भी बहुत ही आसान हो जाता है। और जब वो सफर आसान होता है तो वो और ज्यादा करीब आपके होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्कुल आपके अपने दिल में उतर जाता है, और वो कोई और नहीं होता, वो होता है जो आपको जानता है, आपको समझता है, आपके जज्बात की कदर करता है। वही वो शख्स होता है जो आपके दिल में उतर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आप समझे कि आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत और कामयाब है। अगला नगमा कुछ ऐसा ही है, फिल्म वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही प्यारी महफिल में।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का है नगमा, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। ये वो महफिल है जिसमें आप जिंदगी की बातें करते हैं, जिंदगी की बातें सुनते हैं और जिंदगी को खूबसूरती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ाई जाए उसके बारे में बातें करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारा ये सफर कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताइएगा। और उसके लिए आपको हमारे ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, आप अपना फीडबैक इस पर भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम के जरिए हमसे जुड़े और हम आपके लिए जो बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं, जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम नगमे हम आपके खिदमत में यूं ही पेश करते रहेंगे। अगला नगमा हमराज फिल्म का तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। और अगर कोई है जिसका आप साथ देना चाहते हैं और कोई है जिसका आप साथ चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये नगमा आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।

0: لتا جی اور بھوپیندر سنگھ کی نئی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت ارونیما سے. لیکن سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار میں پھر رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں فرحت ناز. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रूपये की हैं. श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डेबेलूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे. वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे. ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा. इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे. दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ. राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे. उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है. तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की.

0: और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP rule states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 a.m. this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी बातें भी होती है, और ये भी कि हम जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात से कैसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और अपनी मंजिल को तय करें। लेकिन हर सुबह जब हम जगते हैं, हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और खुदा के नाम के साथ ही, ईश्वर के नाम के साथ ही हम हर नए दिन का आगाज करते हैं। तो हम भी आज उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, तो आइए आज की सुबह का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त

जी हाँ, तेरी है जमीन, तेरा आसमां, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ, ये जान, ये जिस्म और ये सेहत, ये तमाम चीजें तुम्हारी दी हुई है, यानी उस खुदा, उस ईश्वर की दी हुई है। वो चाहे तो हमें इससे भी बेहतर कर सकता है, वो चाहे तो हमें इससे भी बुरे हालात में रख सकता है, लेकिन हर हालात में वो हमारे लिए बेहतर सोचता है। वो सर्वश्रेष्ठ है और इंसान को भी ऐसा ही बनाया है। और इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें सबसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया गया है। और तमाम चीजों पर, तमाम कुदरती चीजों पर एक इंसान ही है जो अपनी हुकूमत करता है। और इंसान बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। अगर सही दिशा में चले, सही रास्ते पर चले, तो जिंदगी बेहद खूबसूरत है। और वही इंसान जब कोई गलत रास्ता इख्तियार कर ले, तो सबके लिए, पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश, पूरे वतन, पूरे मुल्क के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छी जिंदगी बनाए और औरों को साथ लेकर आगे बढ़े। और कहते हैं कि हर नया दिन, हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई रोशनी के साथ आता है और जिंदगी में नए ख्वाब सजाने के लिए आता है। इसलिए हम भी कोशिश करें कि हर नए दिन में, एक नई सुबह में, एक नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें और अपने कदम को आगे बढ़ाएं और हर सुबह को एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करें इस नगमे की तरह। फिल्म याश का ये नगमा और आवाज है इस उदास की।